0: Leica Radio. CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram.
1: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code HAMARIRAM10 for a 10% discount on all shows and tickets.
0: Exclusive radio partner, Leica Radio.
2: CTV HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से
3: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है
4: खुद से भी ज्यादा
2: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में
4: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है
2: क्या ये नजदीकियां बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा देखिए तुमसे तुम तक हर रात 8 बजे CTV HD पर अवेलेबल ऑन Sky 707 Sky Glass 714 Virgin Media 809 8394
0: Leica Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and Leicestershire with the UK's biggest Asian hits.
5: अपने business को UK के largest Asian commercial radio network पर advertise करने के लिए call करें. Leica Radio Sales on 0116-471-0697 या email करें sales@leicamedia.co.uk.
0: Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

0: ये है
1: लाइका रेडियो
2: लोकेशन लोकेशन लोकेशन
3: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर
2: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
3: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन
2: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स
3: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50+ एमिनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी
2: एंड द बेस्ट पार्ट टाउनहाउसेस एंड विलास ग्रीन्स स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £711,000
3: टू बुक कॉल आवर लंदन ऑफिस ऑन 02039635757 Greens by Danube Prime location
2: High appreciation
3: In Dubai
4: Uncle G spent £40,000 on rent but zero online His shop is empty His nephew's TikTok is booming Be seen Visit HeartyHanks.com Hearty Hanks Outdated is out of business Visit HeartyHanks.com today
5: Leica Radio Network Broadcasting across the UK with Asian stations. This is the Leica Radio Network, broadcasting across the UK. Did you know you can advertise on this station, Leica Radio Midlands, plus our other offerings, Leica Radio Greater London, Leica Gold Greater London, and Leica Radio Greater Manchester. As a combined network, we can give you a competitive rate to spread your message to a wider audience. Call 0116 471 0697 or email sales@leicamedia.co.uk. Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

0: Leica Radio.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected.
3: Your father has built his business on trust. Your son will look for it online. No website, no future. Secure your legacy. Visit HartyHanks.com today. Harty Hanks. Build your future before someone else does. Visit HartyHanks.com today.
4: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at RadioCentre.org. Assuming you want to get noticed.
0: Seven stations. One podcast. One mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0116 471 0697 or sales at leicamedia.co.uk. Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

गावे को गुण वडियाई चार, गावे को विद्या विखम विचार, गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लय फिर दे, गावे को जापे दिसे दूर, गावे को एक है हादरा दूर, कथना कथिना आवे तोट, कथ कथ

मैं विसर ना जाए। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जानी है नाल चले सब कोए। चंगा नाव रखाए कै जस कीरत जागले, जे तिस नदर ना

मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहें उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाय तार, कुदरत कौन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, दूसरा सलामत निरंकार, असंख मूर्ख अंध गोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भखाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख

जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवार।

0: लाइका रेडियो पंजाबी लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते लाइका रेडियो .com ते एलेक्सा प्ले लाइका रेडियो पंजाबी पंजाबी 7 स्टेशंस 1 पॉडकास्ट 1 मोबाइल ऐप Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0116 471 0697 or sales at leicamedia.co.uk.
1: नमस्कार, रवि शर्मा रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ. मंडे टू फ्राइडे जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच. मंडे टू फ्राइडे मनोरंजन विद रवि शर्मा.

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। No, really, I mean it. और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: Enjoyable holidays according to your taste and budget. Call 0203-773-633 to book your dream holiday.
1: Laika Radio.
2: The theatrical blockbuster Mrs. Kapoor's Daughter's Wedding is back for a third season. This time there's a wedding, a secret and a murder.
3: OMG!
2: Mrs. Kapoor's Daughter's Wedding 3, The Murder Mystery. As the celebrations begin, the truth turns deadly.
3: Murder Mystery!
2: In Leicester on the 4th of July at the Curve Theatre and Birmingham on the 26th of July at the Alexandra Theatre. Get your tickets now before the killer gets away. NKDW.co.uk. Exclusive radio partner Laika Radio.
3: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
4: वेल, शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
3: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
1: Laika Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
0: Dreaming of Europe? Explore Paris, Switzerland, Holland, Italy and more with Mantra Holidays. Our tours offer authentic Indian food, experienced tour managers and Schengen visa assistance for a hassle-free journey where we take care of everything. Visit mantraholidays.co.uk or call 0203-773-633 now. That's 0203-773-633. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
5: मेरे पापा को गुलाब जामुन बहुत पसंद है.
6: ऑर्डर ऑनलाइन एट pujasweets.com. फ्रॉम बर्फी, लड्डूज, गुलाब जामुन टू समोसा एंड गाठिया. फ्रॉम केटरिंग स्टार्टर्स टू डिजर्ट, पूजा स्वीट्स एंड सेवरीज.
7: अभी कॉल कीजिए 0116-202-1222 और विजिट मेल्टन रोड LE4 5EA.
6: पूजा स्वीट्स एंड सेवरीज.
8: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी. सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS. कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर लेस्टर में.
9: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
10: Punjab's biggest tunes.

मारना के और सुनो हाँ, एक परी थी क्या, एक परी थी, तोता परी, हंसी वो बड़ी थी, गगन देश था उसका, क्या गगन देश था उसका, अजब भेष था उसका, चले रात आगे, सुनो सुनो बात आगे, सुनो सुनो सुनो तो, अरे अरे सुनो तो, हाँ।

ये तो अरे अरे अरे ये तो फिर सो गई। अब क्या करूं, अब क्या करूं? कोई है, कोई है, कोई है? अरे हाँ, जाग गई तुम, हैं? जाग गई। और सुनो, और सुनाता हूँ। हाँ

0: Biker Radio.
1: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410। साउथहॉल ट्रेवल
2: प्रोटेक्टेड। यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए। दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
3: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। What's your travel mantra?
4: This summer, don't just step out, stand out. The Janan and J-Dot summer sale is almost here, with up to 70% off fashion made for brighter days, special moments and summer celebrations. Visit your nearest Janan and J-Dot store from Saturday the 4th of July or shop the sale online from Friday the 3rd of July. Your next favorite look is waiting in store and online. Janan and J-Dot summer sale, up to 70% off this summer.

0: जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल गाके सुनाएंगे। किशोर दा आड़ी बर्मन और सपना चक्रवर्ती की आवाजों में ये गाना आपने सुना, और मैं भी यही कहूंगी कि जिंदगी का तो पता नहीं, लेकिन ये आने वाले 3 घंटे हम और आप मिलकर बिताएंगे, अच्छे अच्छे गाने सुनेंगे और एक अच्छा समय बनाएंगे। तो स्वागत है आप सभी का इस शो में, ये है लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स एंड लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, जहां पर एक बार फिर से ऋतु शर्मा हाजिर है रवि शर्मा जी के मनोरंजन प्रोग्राम में आप सबका साथ देने के लिए अब से लेकर दोपहर के पूरे 1 बजे तक। और जरा ये तो बताइए कि आप सब कैसे हैं, क्या हालचाल है। तो बिल्कुल इस प्रोग्राम में आपकी हालचाल भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम। और भाई आपके ढेरों मैसेजेस मिलते जा रहे हैं। ज्योति कहती है कि ऋतु ये जो मेहता फैमिली है ना हमारी, इस लाइक सत्ते पे सत्ता फिल्म के जैसी है। हम सब बहुत ही क्रेजी है, बहुत ही नॉटी है, मिस्चीवियस है और हंसी मजाक के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो ज्योति जी यही तो है जीवन का असली मजा, और इसी को तो कहते हैं परिवार, वरना तो लोग अकेले ना रह लें। तो जब परिवार में ये हंसी खुशी मस्ती का माहौल होता है ना, तो जीने का मजा कुछ अलग ही हो जाता है। तो चलिए अब बातें करते रहेंगे, साथ देते रहेंगे, आप हमारा साथ देते रहिए, मैं आपको गाने सुनवाती रहूंगी।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज 1 pound आपको देगा 126.75 भारतीय रुपए, और ये ट्रांसफर याद रखिए आपको करवाना होगा वाई एस बी आई ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एस बी आई यू के मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई होंगे।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीज एंड सीज अप्लाई।
2: ये है लाइका रेडियो।
3: Like a radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates, and for other legal requirements.
0: तो आज बोस्निया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में मैच आज स्पेन और ऑस्ट्रिया के बीच में मैच है। दरअसल आज स्पेन और ऑस्ट्रिया के बीच में मैच होगा, लेकिन आपको बता दें कि आप अपना 15 मिनट का फ्री लीगल एडवाइस लेना बिल्कुल मत भूलिए हमारे स्पॉन्सर्स रैकलो से, और ये सब आपको मिलेगा जब आप मेंशन करेंगे लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203-345-2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk.
2: Leica Radio.
4: लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
5: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी।
4: समारा ब्लैक टी 1 kg 3.99, एलिफेंट मीडियम आटा 25 kg 14.99, फाल्कन ब्राउन शुगर 3 kg 3.99, लैला बासमती राइस 10 kg 11.99, सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम 1.99, फाल्कन रेड लेंटिल्स 1.5 kg 24.399, पार्ले जी मल्टीपैक बिस्किट 7.99 ग्राम 1.99, फाल्कन लेमन जूस 250 ml 3 for 1, फाल्कन Cash and Carry,
5: 82 Assistant Street, LE12JU, या Rowlatt Hill, LE54UN.
4: Big deals, big savings, while stocks last.
6: After the smash hit run in 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bhangra and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic panto tale on its head and give it an exciting dizzy twist. Coming to the Belgrade Theatre, Coventry, 16th to the 19th of July. Click RifkoTheatre.com for more info. And with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight. Come join Surinderella this summer as she goes back into the Bollywoods. Surinderella, panto fun for all the family.
3: Radio partner Leica Radio.
4: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danio. Prime location.
4: High appreciation.
7: In Dubai.
8: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel. Your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises, and soul-enriching yatras. We've got it all. Call Citybond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
9: એક ઐતિહાસિક અને દિવ્ય અવસર પેરિસમાં ભવ્ય BAPS સ્વામિનારાયણ મંદિરના ગ્રાન્ડ ઓપનિંગમાં દર્શનનો લાભ. આ પવિત્ર યાત્રામાં જોડાઓ આપના પરિવાર સાથે, જ્યાં મળશે શાંતિ, ભક્તિ અને આનંદ, અને સાથે આઈફિલ ટાવર, સેન રિવર ક્રુઝ અને પેરિસ સિટી ટૂર નો આનંદ માણો. ડિપાર્ચર 5 સપ્ટેમ્બર ના મંત્રા હોલિડેઝ. કોલ કરો 0203-773-6333. મંત્રા હોલિડેઝ, વોટ્સ યોર ટ્રાવેલ મંત્રા.
10: 89% of UK customers check online before they spend. If they don't find you, they won't choose you. Go digital. Visit heartyhanks.com now. Hearty Hanks. Facts don't lie. Results don't wait. Visit heartyhanks.com now.
11: Pepe's, famous for flame-grilled marinated chicken, with over 215 stores nationally. Download the Pepe's app, where you can choose to have your order collected or delivered. Delivery is available in selected stores. Every first order on the Pepe's app, customers receive a 10% discount, plus a chance to spin to win some fantastic prizes. Order at Pepe's today.
1: This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network.
12: You're both on the same road. Same tarmac, same rules. Just a different number of wheels. Motorbikes aren't in your way, they're on their way, just like you. So use your mirrors, check before you maneuver, and be aware of motorbikes, because when we look out for each other, everyone gets where they're going safely. Motorbike safety, it's on all of us. National Highways.
13: Bring your vision to reality with ImagineX Global. Our team of Imagineers create immersive experiences from digital content to epic live events. Whether it's a high-energy concert, an innovative conference, sleek brand visuals, or stunning photography and videography for your special moments, we have you covered. We're a tech-driven, human-led creative experience company delivering cutting-edge digital solutions and expert event management. Let's turn your ideas into epic memories. Contact us today at imaginexglobal.com or WhatsApp 0758 580 1801 and let your ideas take center stage. ImagineX Global, where creativity, technology and humanity unite the world.
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
14: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: यस जंगली फिल्म से था ये गाना मुकेश जी और आशा भोसले की आवाजों में शमी कपूर की सुपरहिट फिल्म। और जानते हैं इसमें सायरा बानू सिर्फ 17 साल की थी और आई थिंक ये सायरा बानू की डेब्यू फिल्म थी जिसमें उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन भी मिला था।
1: Brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो आपको याद दिला दें एक बार फिर से कि आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद रेडियो जो है लाइक अ गोल्ड इन ग्रेटर लंदन एंड लाइक अ रेडियो इन मिडलैंड्स, और जहां पर रितु शर्मा हाजिर है आपका साथ देने के लिए सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी। और आपके ढेरों मैसेजेस मिले हैं तो चलिए एक नज़र आपके मैसेजेस पर भी डाल ली जाए। जासू जी स्वागत है आपका इस शो में। हंसा जी धन्यवाद। नॉर्थ हॉल से प्रकाश सुथार जी है ना। नरेंद्र बागिया जी धन्यवाद। और आज भी आपने कुछ अर्ज किया है, लिखते हैं कि जरूरी नहीं कि दोस्तों में बात होती रहे, ये भी जरूरी नहीं कि दोस्तों में मुलाकात होती रहे, जरूरी ये है कि दोस्त जहाँ भी रहे उनसे हमारी उन्हें हमारी याद होती रहे। चलिए बहुत अच्छा, आपके सारे दोस्तों के नाम पर जाती हैं ये चार लाइनें। और विनोद जी हमारे साथ हैं, अरुणा जी प्रोग्राम सुन रही हैं, गुड वाली मॉर्निंग भरत गंगाराम जी, हेतल सोलंकी सहर, हमारी आंटी जी, आज तो आपका दिन बन गया। शुरू के दोनों गाने अमिताभ बच्चन पर पिक्चराइज थे जिन्हें आपने अपने हस्बैंड को जलाने के लिए लाउड म्यूजिक पर सुने, क्या बात है। थैंक यू आपके मैसेज के लिए और मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू मिसेस शेख तोची जी, अर्जुन जी एंड ऑफ कोर्स हमारे गिरीश जी भारत में प्रोग्राम सुन रहे हैं, हरीश खत्री जी, थैंक यू आप सभी के मैसेजेस के लिए। और चलिए आगे बढ़ जाते हैं और शुरू करते हैं आज के प्रमुख समाचारों का सिलसिला।
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
0: आज के प्रमुख समाचारों में सबसे पहले खबर आ रही है बंगलुरु से। कर्नाटक में बंगलुरु के पास मादपट्टना गांव में एक पत्थर की खदान में बड़ी चट्टान गिरने से बिहार के 7 प्रवासी मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई है। आज भारतीय शेयर बाजार सेंसेक्स और निफ्टी में बढ़त देखी गई है। दिल्ली में सोने की कीमतों में बड़ा उछाल आया है, जहां 24 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर 1,44,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ की पुलिस में एआई ने कमाल मचा दिया है, वो ऐसे कि छत्तीसगढ़ पुलिस में पिछले 3 सालों से चल रहे फर्जी वेतन घोटाले को इंसानी निगरानी तो नहीं पकड़ पाई, लेकिन एक एआई बेस्ड ऑडिट सिस्टम ने इस गड़बड़ी को पकड़ लिया है। केरल हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है, वहां पर इडुक्की जिले के इलाइची पहाड़ी रिजर्व जो कार्डमम हिल रिजर्व है उनमें बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई और अवैध निर्माण को लेकर केरल उच्च न्यायालय ने खुद संज्ञान लेते हुए जनहित में एक याचिका शुरू की है। आज से आषाढ़ का महीना शुरू हुआ है, आषाढ़ का महीना चल रहा है और आज कोई बड़ा त्योहार भारत में तो नहीं मनाया जा रहा है, लेकिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ का महीना भी पवित्र माना जाता है और इस महीने में जगन्नाथ यात्रा शुरू की जाती है जो इस बार 16 जुलाई से शुरू हो रही है और उसकी पूरे देश में धूमधाम से तैयारियां शुरू हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत दौरे पर बुधवार को दिल्ली पहुंची जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची का स्वागत करते हुए दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत बनाने पर जोर दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत और जापान के संयुक्त प्रयास इंडो पैसिफिक क्षेत्र सहित दुनिया में शांति स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देंगे। उन्होंने कहा कि भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रधानमंत्री सनाई तकाईची, हमें आपके पहले भारत दौरे पर आपकी मेजबानी करके बहुत खुशी हो रही है और मैं गुरुवार को हमारी बड़ी बातचीत का इंतजार कर रहा हूं जो आज होने वाली है, जिससे भारत और जापान की स्पेशल स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप और गहरी होगी। रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से भीषण हमला किया है। इस हमले में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है और 34 यानी कि 34 से अधिक लोग घायल हुए हैं। एक 9 मंजिला आवासीय इमारत को भी भारी नुकसान पहुंचा है। उधर अमेरिका ने व्यापार घाटे का हवाला देते हुए मेक्सिको और कनाडा के साथ अपने त्रिपक्षीय व्यापार समझौते को सालाना समीक्षा ट्रैक पर डाल दिया है और उन्हें तुरंत रिन्यू करने से इनकार भी कर दिया है। और फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने डीआर कांगो और बेल्जियम ने सेनेगल को हराकर अंतिम 16 में एंट्री ले ली है। कल फीफा वर्ल्ड कप में खेले गए एक मैच में हैरी केन ने दो शानदार गोल की बदौलत इंग्लैंड ने डीआर कांगो को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में एंट्री करा दी है। कैप्टन हैरी केन ने दूसरे हाफ में 11 मिनट के भीतर दो गोल दागकर इंग्लैंड की वर्ल्ड कप जीत की उम्मीदों को एक नई जान दे दी है। उनके दम पर इंग्लैंड ने कल रात अटलांटा में खेले गए राउंड ऑफ 32 मुकाबले में डीआर कांगो को 2-1 से हराकर शानदार वापसी की है और अब इंग्लैंड का सामना संडे को मैक्सिको सिटी के एजटेका स्टेडियम में होस्ट मैक्सिको से अंतिम 16 में होगा, यानी कि अगला मुकाबला इंग्लैंड का मैक्सिको से होगा और देखने वाली बात है कि इस मैच में इंग्लैंड क्या कमाल दिखाती है। यही थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
1: This is Leica Radio. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: क्या खूबसूरत धुन बनाई है जतिन ललित ने। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे शाहरुख खान और काजोल की सुपरहिट फिल्म। और इस गाने को सुनकर हरीश खत्री कहते हैं, ऋतु ये मेरा फेवरेट वाला गाना है। हां जी हरीश जी, बिल्कुल है, क्योंकि कुमार शानू आपके फेवरेट है तो गाना भी आपका फेवरेट ही होगा। चलिए आपके नाम करते हैं। एंड वंदना गुटका कहती है कि मुझे पार्लियामेंट में अवार्ड मिला है। क्या बात है वंदना जी, बहुत बहुत बधाइयां। लेकिन ये अवार्ड किस लिए मिला है जरूर बताइए, लेकिन आपने कुछ जरूर अच्छा ही किया होगा। पार्लियामेंट में आपको बॉब ब्लैकमैन से अवार्ड मिला है तो बहुत बहुत बधाइयां, खुशी की बात है। और इसके अलावा क्रॉइडन से महेंद्र पटेल जी हमारे साथ हैं, शेखर आनंद जी ने भी अपनी अटेंडेंस लगा ली है, थैंक यू साथ देने के लिए। और हंसा जी, हैना जी भी हमारे साथ हैं, तो बस साथ देते रहिए, ऐसे ऐसे गाने सुनवाती रहूंगी।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोको नूडल्स, क्विक टेस्टी हेल्दी फ्लेवर्स, परफेक्ट फॉर माय बिजी डे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर। ये है लाइका रेडियो।
0: हॉलिडे ब्रेक्स आर ब्रॉट टू यू बाय साउथ ओल्ड ट्रैवल। और अगर कहीं हॉलिडे पर जाने की सोच रहे हैं तो दुबई से साउथ हॉल से कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि उनके लिए दुबई के बहुत अच्छी डील्स चल रही हैं। आपको उन्हें फोन करना है ऑन 0208-574-8410 पर। ये सब एट ऑल प्रोटेक्टेड है।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Leica Radio.
2: This summer, don't just step out, stand out. The Janan and J. Summer Sale is almost here, with up to 70% off fashion made for brighter days, special moments and summer celebrations. Visit your nearest Janan.

0: इस गाने को जब मैं सुन रही थी तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आवाज महेंद्र कपूर की है या ये आवाज रफी साहब की है। इतनी मिलती जुलती आवाजें लग रही थी दोनों की, लेकिन बहुत ही खूबसूरत गाया है ये गाना महेंद्र कपूर ने, और उन्हें इस फिल्म में गीत गाने के लिए फिल्म फेयर का बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी मिला है। और ये बीआर चोपड़ा की एक ऐसी फिल्म थी जिसने अवार्ड जीता था, और ये एक बहुत ही अच्छी फिल्म थी जिसमें एक बहुत अच्छा मैसेज भी था, क्योंकि पुराने जमाने में ज्यादातर जो फिल्में बना करती थी उनमें कोई ना कोई मैसेज जरूर होता था। और ये फिल्म इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई थी कि बाद में इस कहानी पर और भी बहुत सारी फिल्में बनी, लेकिन जो कमाल इस फिल्म ने दिखाया वैसा तो शायद कोई और फिल्म नहीं कर पाई। गाना आप सबको पसंद आया, थैंक यू, साथ देते रहिए। एक बार फिर से याद दिला दूं कि इस शो में ऋतु शर्मा आपके साथ है, सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी। गुड मॉर्निंग,
1: ये है Like Her Radio। Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज 1 pound के बदले में आपको मिलेंगे 127.26 भारतीय रुपए, 371 पाकिस्तानी रुपए एंड 164 बांग्लादेशी टकास।
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Manoranjan with Ravi Sharma. LIKA Radio.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: So gold rate is 98.16 pounds per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116-266-4278.
2: Leica Radio.
1: Leica Radio.
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागस एंड सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 0208839080 और विजिट ragasun.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
4: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre, India aur Dubai mein houseful shows ke baad ab pehli baar London mein dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage 9 se 12 July Eventim Apollo Hammersmith Hamare Ram.
5: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code Hamare Ram 10 for a 10% discount on all shows and tickets.
4: Exclusive radio partner Leica Radio.
6: Sita aaj Lanka khud jalane aayi.
7: This July, witness the rise of a new force.
6: Hi boys.
8: What's up?
7: Yashraj Films presents Alpha. Alpha stars Alia Bhatt and Shadvari in a high-octane action spectacle alongside Bobby Deol and Anil Kapoor.
6: Mujhe sirf tumse baat karni hai. Rok lo.
7: Produced by Aditya Chopra and directed by Shiv Rawal.
9: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है.
7: Don't miss India's biggest female-led action event.
9: India Alpha से करेगा.
7: Alpha in cinemas from the 3rd of July.
10: Location, location, location.
11: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
10: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
11: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
10: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
11: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
10: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
11: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
10: high appreciation
11: in Dubai.
12: None eaten, get ready. Pepe's Piri Piri is firing up something big. Our store is now open, from flame grilled chicken to mouth-watering wraps. It's bold, it's spicy, it's pure Pepe's. Visit us at 126 Abbey Street, CV 11 5BZ. Pepe's Piri Piri. Pepe-licious.
1: Ye hai Leica Gold 2.

0: लाइका रेडियो पंजाबी लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते लाइका रेडियो डॉट कॉम ते एलेक्सा प्ले लाइका रेडियो पंजाबी पंजाबी।
1: माँ को बोल की जल्दी मच्छी लेकर आए।
2: हो अपनी माँ को बोलो मैं लेकर आऊंगा।
3: नाम परशुराम, अधर्म का करता हूँ काम तमाम।
1: अरे कहाँ हो तुम?
4: हो आलो आलो।
5: परिवार उसके लिए चारों धाम, बाहर वो है परशुराम।
6: Watch Mr. and Mrs. Parshuram Monday to Sunday at 7:30 PM only on Utsav Plus. Sky Channel 705, Virgin Media 803 and EE392.
7: Seven stations. One podcast. One mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0116 471 0697 or sales at leicamedia.co.uk. Wake up to Kajal on breakfast every weekday at 6 a.m. and drive back with Raj Badden weekdays at 4 p.m. Leica Radio.

जी हाँ, आज थर्सडे का दिन है, 2 जुलाई हो गई है, 11:03 हुए हैं और ये समय है चिंतन का। चिंतन यानी कि आज का विचार। और आज के चिंतन में भी हमेशा की तरह एक ऐसी कहानी जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज छुपा हुआ है। आज की कहानी है अमित की, जो एक बहुत ही बड़ा और कामयाब बिजनेसमैन था। उसके पास आलीशान बंगला, गाड़ियां और बहुत सारा पैसा था। जब तक अमित के पास पैसा था ना, उसके दोस्तों की कोई कमी नहीं थी। हर शाम उसके घर पार्टी होती और लोग उसकी तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते थे। अमित को लगता था कि ये सब उसके सच्चे दोस्त, सच्चे शुभचिंतक हैं और वो उन्हें खुश करने के लिए खूब पार्टी देता, खूब खर्चा करता। लेकिन वक्त का पहिया घुमा। एक बहुत बड़े बिजनेस घाटे और धोखे के कारण अमित की जो कंपनी थी वो दिवालिया हो गई। उसका बंगला, गाड़ियां सब बिक गए और फिर वो एक छोटे से किराए के मकान में रहने लगा, क्योंकि बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले तो वो अफोर्ड कर ही नहीं सकता था। और जैसे ही अमित के बुरे दिन शुरू हुए, उसके जो दोस्त थे, या कहूं तथा कथित दोस्त थे, जो जिगरी दोस्त थे, उन्होंने रंग बदलना शुरू कर दिया। जो दोस्त रोज फोन करते थे, उन्होंने अमित का नंबर ही ब्लॉक कर दिया और रास्ते में मिलने पर लोग नजर चुरा कर निकलने लगे। उन्हें लगने लगा कि कहीं ये हमसे कुछ मांग ना ले। जब अमित को सचमुच मदद की जरूरत थी, तब सभी ने कोई ना कोई बहाना बनाकर पल्ला झाड़ लिया। अमित पूरी तरह से टूट चुका था, अकेले ही बैठकर कमरे में रो रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला, देखा सामने पुराना स्कूल का दोस्त राघव खड़ा था। राघव एक बहुत ही साधारण नौकरी करता था और अमित की रईसी के दिनों में उसकी चमचमाती पार्टियों में भी नहीं आता जाता था, क्योंकि वो अपने साधारण नौकरी, साधारण जीवन से बहुत खुश था। लेकिन जब उसे अमित के बारे में बात पता चली, तो उससे रहा नहीं गया। वो तुरंत उससे मिलने आया और उसने कहा, भाई कोई मदद हो मुझे बताना, जैसा भी होगा मैं तेरी मदद जरूर करूंगा, मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकता हूं। अमित बस राघव को देखता ही रह गया। राघव ने अमित के कंधे पर हाथ रखा और कहा, भाई वक्त तो बुरा है, लेकिन तू नहीं, तेरे पास पैसा नहीं तो क्या हुआ, तेरे पास वो हुनर और दिमाग आज भी है जिससे तूने वो मुकाम पाया था। चलो उठो, जीरो से शुरुआत करो, मैं तेरे साथ हूं, हिम्मत क्यों हारता है। राघव के इस भरोसे ने अमित के अंदर फिर से हिम्मत भर दी। दोनों ने मिलकर एक छोटा सा काम शुरू किया और अमित ने अपनी मेहनत और राघव के साथ कुछ ही सालों में अपना खोया हुआ मुकाम फिर से हासिल कर लिया। और अब अमित के पास फिर से पैसा था और वही मतलबी दोस्त दोबारा उसके पास आने की कोशिश करने लगे। लेकिन इस बार अमित समझदार हो चुका था। उसने मुस्कुराकर ही उन्हें दूर से अलविदा कह दिया। छोटी सी कहानी, लेकिन सीख बहुत बड़ी है। जब आपके पास सुख और पैसा होता है ना, तो पूरी दुनिया आपकी दोस्त बन जाती है। लेकिन दुख और संकट ही वो थर्मामीटर है जो ये नापते हैं कि कौन अपना है और कौन पराया। इसलिए बुरे वक्त से घबराए नहीं, क्योंकि बुरा वक्त आपकी जिंदगी के फालतू और मतलबी लोगों को
आपकी जिंदगी से साफ करने का काम करता है।

0: राजेंद्र कृष्ण ने इस गाने को कितने सालों पहले यानी कि 1970 में लिखा था और कल्याण जी आनंद जी ने इस धुन को बनाया था, जिसे आज हमने चिंतन के साथ जोड़कर सुनवाया कि सुख के सब साथी दुख में ना कोई, और यही मैसेज था आज के चिंतन का। ये केवल एक मशहूर भजन या गाने की लाइन नहीं है, बल्कि इंसानी फितरत और दुनिया का सबसे बड़ा कड़वा सच है। महान कवियों, दार्शनिक जो हैं, सभी ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि इंसान की असली परख उसके बुरे वक्त में ही होती है। जब हमारे जीवन में सफलता, पैसा और खुशियां होती हैं, तो हमारा जीवन रोशनी से भरा होता है। जैसे रोशनी में परछाई हमारे साथ चलती है ना, वैसे ही सुख के दिनों में दोस्तों, रिश्तेदारों और तारीफ करने वालों का मेला लगा रहता है। लोग हमारे करीब आना चाहते हैं क्योंकि वो हमारे सुख का हिस्सा बनना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा होता है, जिस तरह से परछाई रात के अंधेरे में साथ छोड़ देती है, ठीक उसी तरह जब जीवन में संकट, असफलता या आर्थिक तंगी आती है, तो वही सुख के साथी धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। लोग बहाने बनाने लगते हैं, फोन उठाना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं उन्हें उनकी मदद ना करनी पड़ जाए। ये सारी बातें शुरुआत में बहुत तकलीफ देती हैं, लेकिन अगर इन्हें एक पॉजिटिव नजरिए से देखा जाए तो दुख दरअसल एक फिल्टर की तरह काम करता है। ये आपके जीवन से कचरा यानी कि मतलबी लोगों को साफ कर देता है, और ये आपको पहचान कराता है कि कौन सच में आपका अपना है और कौन सिर्फ मुखौटा पहने हुए है। इसलिए आज की कहानी से छोटी सी सीख है कि जब बुरा वक्त आए और लोग साथ छोड़ दे तो निराश मत होइए, उस वक्त को एक अवसर मानिए और ये जानने का अवसर मानिए कि दुनिया में आपकी असली ताकत कौन है। अक्सर दुख के उस अंधेरे में जो एक या दो लोग आपके साथ खड़े रह जाते हैं ना, वही आपकी जिंदगी के, आपके जीवन के असली रत्न होते हैं, और उन्हीं का सम्मान कीजिए, उन्हीं का ख्याल रखिए, क्योंकि वही होते हैं आपके अच्छे और सच्चे दोस्त। आज की कहानी से रिलेटेड बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। भावना जी का भी कहना है कि बिल्कुल सही कहा आपने, थैंक यू रिकिन जी, आप भी हमें सुन रहे हैं। हंसा जी, गिरीश जी कहते हैं कि यस, सच्चाई भरा गाना है और लोग अगर ईश्वर से प्रेम कर लें तो अंत में उन्हें रोना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि एकमात्र ईश्वर ही ऐसा है जो आपको कभी धोखा नहीं देगा। शेखर जी, उल्लास जी, महेंद्र पटेल जी, फरीदा जी, जासू जी, अर्जुन, फतेह पटेल, दिव्या जी हैरो से, जगदीश जी बुशी से, रोहित जी, मृदु जी, हिमा जी, सभी के मैसेजेस मिले हैं, सभी को चिंतन बहुत अच्छा लगा है। सो थैंक यू साथ देने के लिए। हमेशा ही आप चिंतन 11 बजे की खबरों के बाद सुनते हैं रवि शर्मा जी के साथ, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से मैं उनकी जगह इस शो में आपका साथ दे रही हूँ, लेकिन मंडे से रवि शर्मा जी फिर से हाजिर हो जाएंगे। चलिए लौट जाते हैं अपने गीतों की ओर, सुनवाते हैं आपको अगला गीत।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज वन पाउंड के बदले में आपको मिलेंगे 126.75 भारतीय रुपए, और याद रखिए कि ट्रांसफर आपको करवाना होगा वाया SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग दी योनो SBI UK मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई रहेंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate and for other legal requirements.
0: तो आज स्पेन और ऑस्ट्रिया के बीच में मैच होगा, लेकिन आपको याद दिला दें कि 15 मिनट का फ्री लीगल एडवाइस लेना बिल्कुल मत भूलिए हमारी स्पॉन्सर्स रैक लॉ से, और ये सब आपको मिल जाएगा जब आप मेंशन करेंगे लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
3: Yeah. Like our radio.
4: City Bond Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
5: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
4: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
5: Also explore 2026 cruises.
4: From Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call City Bond Travel on 01162 167 225. We're at all protected.

0: बहुत ही खूबसूरत गाना, वन ऑफ माय फेवरेट, बॉम्बे का बाबू, जिसमें देवानंद थे और साथ में थी सुचित्रा सेन। और ये गाना आप सबको अच्छा लगा है, सो थैंक यू साथ देने के लिए। और आपके ढेरों मैसेजेस भी पहुंचे हैं जिसमें चिंतन से रिलेटेड बात लिखी हुई है।
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: सो थैंक यू साथ देने के लिए। एंड रिकन जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि चिंतन में आपने जिस तरह के लोगों के बारे में बात की थी, ऐसे दोस्त मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं और आप उन्हें पर किलोग्राम के भाव से भी खरीद सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, थैंक यू जासू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। किरण जी थैंक यू। परविंदर मथारू कहती है कि तेरा साथ है कितना प्यारा, मेरी फ्रेंड के नाम पर कीजिए। बिल्कुल, हमने उनको दिया। निर्मला जी थैंक यू। जासमीन थैंक यू। शोभना राय बहुत बहुत धन्यवाद। नलिनी शाह जी थैंक यू। भावना जी, एसएस भोगल एंड हमारे जितने भी साथी हैं, सभी का धन्यवाद। गीतों को आप पसंद कर रहे हैं तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और हाँ, याद दिला दूं, प्रोग्राम के अगले हिस्से में एक इंटरव्यू भी होने वाला है। हमारे यहाँ स्टूडियो में कोई आने वाले हैं जिनके बारे में जिनसे मैं बात करूंगी, और वो कौन है और किन के बारे में बात होगी ये मैं आपको बताऊंगी थोड़ी ही देर में। लेकिन फिलहाल ये बता दें,
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा, एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट।
0: तो भाई, लाइका एक्स्ट्रा का नया एपिसोड आ चुका है, और इस बार का जो एपिसोड है उसका टाइटल है ट्रेडिशंस एंड टाबूज, और इसे होस्ट किया है रेडियो वाली ने, जो कि लाइका रेडियो की इवनिंग शो प्रेजेंटर है। 7 से 10 बढ़िया गाने बजाती हैं, जरूर उन्हें सुनिए। और आपको बता दें कि लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल है स्पॉटिफाई पर, यूट्यूब पर, अमेजोन पर, एप्पल पर, और जितने भी मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, कहीं पर भी जाकर आप लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट सुन सकते हैं।
1: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is Leica Radio.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
4: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
3: high appreciation
4: in Dubai.
1: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhujar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith, Hamari Ram.
5: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code Hamari Ram 10 for a 10% discount on all shows and tickets.
1: Exclusive radio partner, Leica Radio.
6: South of Travel, 7 days a week. South of Travel, 24 hours a day.
7: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
8: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
6: Southall Travel can take you there.
9: Southall Travel, at all protected.
10: Be part of a historic grand opening.
11: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
10: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
11: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-633.
10: Mantra Holidays. What's your Travel Mantra.
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
12: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to just say everything in English, but louder.
13: 4 beers, please, garçon!
12: If only there was a way that could work with your advertising campaign. Well, there is, and you're listening to it. Because when you amplify your advertising with radio, 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
14: favourite show on Leica Radio Midlands. You can now listen back at leicaradio.com. It could be Breakfast with Kajal, Drive with Raj Badden, the legendary presenters Ravi Sharma, Bali Brambat, or the energetic Radio Wally. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app, available in all iOS and Android stores. Download the app for free and listen to Leica Radio Midlands when you want.
15: मेरे पापा को गुलाब जामुन बहुत पसंद है.
16: Order online at pujasweets.com. From barfi, laddus, gulab jamun to samosa and gathia. From catering starters to dessert, Pooja Sweets and Savories.

0: लता जी की आवाज में मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का ये गाना रोहित को बहुत पसंद है, कहते हैं इसके वर्ड्स बहुत सुंदर है। चलिए रोहित, ये गाना मैंने आपको डेडिकेट किया, इसके साथ नलिनी शाह संतोष जी आपके भी नाम पर जाता है।
1: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
0: और ये अगला गीत हमें लेकर चलेगा न्यूज तक, मिलेंगे आपसे न्यूज के उस पार, और न्यूज के उस पार गीत भी सुनवाएंगे और एक इंटरव्यू भी होगा। बात करेंगे अमूल्य वासा से, जो है फाउंडर ऑफ TW पेस। किस बारे में बातें होंगी सब बताऊंगी, पहले इस गीत को सुनिए, मिलेंगे आपसे न्यूज के उस पार।

0: लीजिए, ये थी लता जी की आवाज अपने जमाने की सुपरहिट फिल्म मेरा साया से लिया था मैंने ये गाना। और उससे पहले लता जी और यशुदास की आवाजों में त्रिशूल फिल्म का गाना जो हम सभी का फेवरेट गाना है। तो बस आप सबने इसे सुना एंड थैंक यू साथ देने के लिए। ये है प्रोग्राम का लास्ट एंड फाइनल आवर जहां पर एक बार फिर से ऋतु शर्मा आपके साथ है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रोग्राम के लास्ट एंड फाइनल आवर में होने वाला है एक इंटरव्यू, और जिनसे हम बात करने वाले हैं वो ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनके बारे में बताती चलूं कि आज हमारे साथ है अमूल्या वासा, द फाउंडर ऑफ TW पेज। तो सबसे पहले उनको वेलकम करते हैं। अमूल्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइका रेडियो नेटवर्क पर।
1: थैंक यू सो मच।
0: तो हम आपसे बस यही जानना चाहते हैं कि आपने अपने लिए एक बहुत ही अच्छी चीज शुरू की है। आपने UK, इंडिया, यूरोप, मॉरिशस और अफ्रीका में कई सारे फाइनेंशियल बिजनेसेस खड़े किए हैं, और अब आप एक नए वेंचर जिसका नाम है TW पेज के साथ ब्रिटिश बिजनेसेस में भी कुछ कमाल की चीजें लेकर आए हैं। हम जानते हैं जैसे कार्ड पेमेंट्स, ऑनलाइन पेमेंट्स, इंस्टेंट पेमेंट लिंक, ये एक कंप्लीट बिजनेस बैंक अकाउंट है। तो कैसे आपको आइडिया आया, आपने कैसे सोचा कि ऐसा कुछ करना चाहिए?
1: ये आइडिया 20 साल पहले आया और 20 साल से ये करते आ रहे हैं। एंड दिस इज वेयर द वर्ल्ड इज गोइंग टू गो इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन पेमेंट्स एवरीथिंग। आप आज कुछ भी देखे तो आप सब कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन वो पेमेंट कौन प्रोसेस करेगा? ये पेमेंट प्रोसेस करेगा TW पेस।
0: Okay.
2: You can say in English. You can answer in English as well, Amulya bhai.
0: हाँ, आप जिसे भी भाषा में comfortable हूँ आप बोल सकते हैं।
1: I'm comfortable in all languages.
0: Oh, that's good. That's good. तो मैं यही जानना चाहती थी कि मतलब आपने ये सब कुछ शुरू किया है तो हाँ कहिए।
1: ने अब कुछ सवाल पूछ रहे थे।
0: अच्छा अच्छा हाँ, तो मैं ये पूछना चाहती थी कि ये जो TW पेज है इसमें ऐसी क्या खास बात है जो ब्रिटिश बिजनेसमैन के लिए ये एक गेम चेंजर हो सकती है?
1: हाँ जी, कम्प्लीटली इट विल बी अ गेम चेंजर इन द ब्रिटिश मार्केट। फॉर द सिंपल रीजन इज वी आर स्केलेबल एंड वी नो आवर कस्टमर्स वेरी वेल एंड we know our customers very well and they will be able to save a lot of money apart from going to other players who are in the market but they have a lot of hidden fees, whereas in terms of TW pays we are very open and transparent in what we are charging and we want to help the Indian community as well as the UK community where small businesses have a lot of trouble getting POS machines, bank accounts, and transfer of money from their account to another people, their vendors, their clients. But here it's going to be a one-stop shop where people are able to receive money in their bank account swiftly and able to transfer bank account swiftly. So the headache of managing the money from their clients to their account, to their vendors, it all becomes a one-stop shop.
0: तो ये तो आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो कार्ड पेमेंट्स है, ऑनलाइन पेमेंट्स और बैंकिंग, इन सबको एक ही प्लेटफॉर्म पर लाना क्या आपके लिए एक बहुत बड़ा टास्क था, और इसके पीछे क्या मुख्य वजह थी? यानी कि इस बिजनेस को शुरू जो आपने किया है, किसी खास प्रॉब्लम को देख कर आपने ऐसा कुछ शुरू किया है?
1: हमने what we identified in the market is that there is not a single player who is doing all the services on one single platform. So I have seen my friends and my clients go to multiple vendors and then the coordination becomes a big problem. But at the same time, what we try to resolve for them is on a single platform, they get everything. So yes, there was a problem in the market. There is still a problem in the market that one, you can get banking from X, you get acquiring from Y, and you get ancillary services from Zed, but at the same time you have everything on one single platform, and that makes it so convenient for the client, and this is the problem we want to try and solve.
0: तो ये जो सेक्टर है इसमें तो बदलाव बहुत तेजी से होते रहते हैं और आपने ये शुरू किया है, तो आप 5 सालों में TW पेस को कहाँ देखते हैं?
1: 5 साल में मैं TW पेस को अपनी खुद की बैंक बनाते हुए देखता हूँ. Where people can actually put in their money on interest and also have the use of our skills in terms of treasury management and FX management, where people can save a lot of money and they are happy. So eventually we are servicing clients across the world, but let's start from here.
0: तो आप यहाँ तो शुरू किया है, लेकिन अगर आप इंडिया में, यूरोप में या किसी और जगह काम करते हैं, तो कुछ फर्क नजर आता है आपको दोनों जगह में, कहीं और यूके के बाहर?
1: यूके के बाहर इंडिया इज अ वेरी वेरी रेगुलेटेड मार्केट कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बट यूके, यूरोप, अफ्रीका, दे आर स्टिल इन अ I believe so that they are still in the baggage where we need to bring them forward in terms of regulations, but at the same time we can help them with our experience, with our knowledge and with our client service approach.
0: तो अगर हमारे listeners इस बारे में और जानना चाहते हैं या इसको use करना चाहते हैं, तो आप उनके उनसे क्या कहेंगे?
1: Visit TW Pace, join us, we will help you and we will handheld you to become a better business person.
0: ओके और हमारे साथ कमल जी भी हैं, वो भी आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं. कमल जी,
2: गुड आफ्टरनून. अमूल्या भाई, यू नो यू स्टार्टेड दिस जर्नी अबाउट 20 इयर्स अगो एंड यू नो यू गॉन स्टेप बाय स्टेप एंड फॉरवर्ड एंड मैसिव एंड यू जस्ट टच्ड ऑन समथिंग दैट यू विल बी ओपनिंग योर ओन यू नो बैंक व्हिच इज एन अमेजिंग थिंग एंड इट्स नॉट यू नो इट्स नॉट सॉर्ट ऑफ इजी थिंग टू डू सो. So what is, can you touch a little bit more? And obviously you will do a lot more in sports, you know, and you obviously sponsors this TW20 Women's World Cup. I mean, why did you sponsor and what did you think about it? And you want to do in the sport industry, hospitality industry. I mean, give me a little short, you know, answer on that.
1: So TW Pace has been always socially very active in terms of managing the society and having a good background on the society. Now, sports is the only one thing that unites people. And TW Pace has sponsored multiple things within the sports arena. And I think sports is the only one thing where there is no religion, there is no caste, there is no creed. But it brings every single person together, and as TW Pace, we want to look at universities, we want to look at football stadiums, football teams, and help them and have embedded finance mechanism into them so that a sports culture is created within the company which is already existing, but at the same time you will be able to get more value out of, let's say you are having a card with Manchester, example Manchester United on it, or Chelsea on it, or Arsenal on it, or any other football team, and you will get benefits out of that when we launch our card in Q4.
2: That's wonderful. So, Umulya, just quickly, you know, to get in touch with you and your company, so is it right, sales@twpays.com, and the phone number is 02031299840 or twpays.com. These are the way to get in touch with people. So I'm sure, you know, today's, you know, in today's world, we need, and it's all gone digital, and you're ahead of your game, and you're bringing new things all the time, and this university you just touched on, and for all the students, it's a fantastic thing you're doing, and all the best for the future, and I pass it over to Ritu.
0: तो बस मैं तो ये कहूंगी कि थैंक यू सो मच अमूल्य वासा जी हमसे बात करने के लिए और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए. थैंक यू, अच्छा लगा आपसे बात करके.
2: बट प्लीज keep on listening.
1: Thank you so much, and I urge the entire UK community to come join us, and we will try and help you solve multiple problems and save money and happy future.
2: And our listeners, don't forget, keep on listening. TW Pays have sponsored our Kamal Prabhakar 2020 T20 for the women's cricket, which is going on. Today's the one semi-final, England playing South Africa, and the final is on the 5th of July. Everybody's excited, and thank you so much for supporting and sponsoring this, Mr. Amulya Vasa.
1: Thank you.
0: Thank
1: Most
0: you.
1: Most welcome.
0: थैंक यू अमूल्य जी एंड थैंक यू कमल जी. बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए.
1: थैंक यू रितु जी.
0: थैंक यू. बाय बाय.
2: थैंक यू. बाय बाय. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज वन पाउंड आपको देगा 126.75 भारतीय रुपए. और याद रखिए, ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा वाया SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप.
3: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio.
4: लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
5: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी.
4: समारा ब्लैक टी 1 kg 399. एलिफेंट मीडियम आटा 25 kg 1499. फाल्कन ब्राउन शुगर 3 kg 399. लैला बासमती राइस 10 kg 1199. सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम 199. फाल्कन रेड लेंटिल्स 1.5 kg 24399. पार्ले जी मल्टीपैक बिस्किट 799 ग्राम 199. फाल्कन लेमन जूस 250 ml 3 for 1. फाल्कन कैश
5: 82 Assistant Street, LE12JU, yeah, Rowlett Hill, LE54UN.
4: Big deals, big savings, while stocks last.
6: This summer, don't just step out, stand out. The Janan and J-Dot summer sale is almost here, with up to 70% off fashion made for brighter days, special moments and summer celebrations. Visit your nearest Janan and J-Dot store from Saturday the 4th of July or shop the sale online from Friday the 3rd of July. Your next favorite look is waiting in store and online. Janan and J-Dot summer sale, up to 70% off this summer. Make your statement.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
7: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
7: High appreciation.
8: In Dubai.
9: Sita aaj Lanka khud jalane aayi.
10: This July, witness the rise of a new force.
9: Hi boys.
11: What's up?
10: Yash Raj Films presents Alpha. Alpha stars Alia Bhatt and Shalvari in a high-octane action spectacle alongside Bobby Deol and Anil Kapoor.
9: Mujhe se tumse baat karni hai. Rok lo. तो बात कर
10: लो. प्रोड्यूस्ड बाय आदित्य चोपड़ा एंड डायरेक्टेड बाय शिव रावल.
12: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है.
10: डोंट मिस इंडियाज बिगेस्ट फीमेल लेड एक्शन इवेंट.
12: इंडिया अल्फा से करेगा.
10: अल्फा इन सिनेमास फ्रॉम द 3rd ऑफ जुलाई.
13: Pepe's Piri Piri is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester, with grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favorites. Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
14: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ. आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे, जहां मड़शे शांति भक्ति अने आनंद, अने साथे आईफिल टावर, सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो. डिपार्चर 5 सितंबर ना. मंत्रा हॉलीडेज, कॉल करो 0203-773-6333. मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा.
11: Save the date. Friday 3rd to Sunday the 5th of July. And Indian summer is back.
15: Presented by Inspirate. Exclusive radio partner, Leica Radio Midlands.
11: For sponsorship inquiries, call Leica Radio on 0116 471 0697.
15: Or sales at leicamedia.co.uk.
16: Bring your vision to reality with ImagineX Global. Our team of Imagineers create immersive experiences from digital content to epic live events. Whether it's a high-energy concert, an innovative conference, sleek brand visuals, or stunning photography and videography for your special moments, we have you covered. We're a tech-driven, human-led creative experience company delivering cutting-edge digital solutions and expert event management. Let's turn your ideas into epic memories. Contact us today at imaginexglobal.com or WhatsApp 0758-580-18. And let your ideas take center stage. ImagineX Global, where creativity, technology, and humanity unite the world.
17: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
18: Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro station, playing Bollywood classics 24/7 and with your favourite presenters live? Get the tune-in details at leicagold.com. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: शमशाद बेगम और मोहम्मद रफी की आवाजों में था ये गाना और आप सब जानते हैं कि शमशाद बेगम ही है हमारी इस बार की आर्टिस्ट ऑफ द वीक। और कुछ साथी कह रहे हैं कि अच्छा लगा बातें सुनकर अमूल्य वासा जी से। उनको बता दूं कि वो फाउंडर है TWPAZ के, जिसे लिखा जाता है TWPAYZ, उसका स्पेलिंग है TWPAYZ। अगर आप इस बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप उनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं TWPAYZ।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: रफी साहब की आवाज में काजल फिल्म से था ये गाना।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: आपको याद दिला दें कि कल 11:30 बजे लेजेंडरी बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर हरिहरन लाइव होंगे लाइका रेडियो हेडक्वार्टर से, और अगर आप उनसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप अपना क्वेश्चन टैग कर सकते हैं हरिहरन ऑन लाइका रेडियो पर। तो कल जरूर प्रोग्राम सुनिएगा, कल हरिहरन लाइव होंगे लाइका रेडियो हेडक्वार्टर पर।
1: Laika Radio.
3: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: Women's Cricket Updates, presented by Carmel Prabhakar, are brought to you by TW Pays. If you're overpaying on your card terminal, we'll show you the truth and cut your costs.
1: And RoboThink, where children don't just use technology, they learn to build it. robothink.co.uk/Leica.
2: तो लीजिए एक बार फिर से कमल प्रभाकर जी हमारे साथ है. और कमल जी, आज क्या क्रिकेट अपडेट्स आप हमारे लिए लेकर आए हैं?
3: रितु जी, गुड आफ्टरनून पहले तो आपको. और यस, सो आज है सेमीफाइनल. टुडे इज अ वेरी बिग गेम. वी गॉट सेमीफाइनल ऑन टुडे एंड इट इज बिटवीन द माइटी इंग्लैंड. इंग्लैंड द होम टीम ऑब्वियसली, तो थोड़ा सा एडवांटेज भी उनको. सो वी साउथ अफ्रीका के साथ, तो साउथ अफ्रीका इज अ वेरी सॉलिड साइड. अगर उसका कैप्टन खड़ी होगी और बैटिंग करेगी तो वो बड़ा कमाल कर सकती है, बिकॉज ही इज द डेंजर वुमन इन साउथ अफ्रीका. एंड देन वी गॉट द बॉलिंग अटैक इन इंग्लैंड, इट्स वेरी स्ट्रांग. बैटिंग इज स्ट्रांग, फील्डिंग इज वेरी गुड. सो बोथ ऑफ देम यू गॉट हैव अ इलेक्ट्रीफाई सेमीफाइनल एंड समथिंग टू प्ले फॉर अ बिग बिग प्राइज टू गेट इन टू द फाइनल. और ये जो भी इनसे जीतेगा तो ऑब्वियसली फाइनल में आ गया. एंड फाइनल के लिए इट्स अ बिग बिग बिग आइटम, यू नो, कि ये अभी देखो कि सेमीफाइनल्स तो हो गया, देन यू गॉट द फाइनल्स विच इज कमिंग ऑन संडे द 5th of July. तो एवरीथिंग टू प्ले फॉर इट टुडे, यू नो, इट्स गोइंग टू बी मैसिव मैसिव. एंड द क्राउड, आई थैंक द क्राउड हु सपोर्टेड देम एंड बीइंग देयर इन बिग नंबर्स. यू नो, लाइक वी हैड इंडिया प्लेइंग ऑस्ट्रेलिया विद 27,000 पीपल, रिकॉर्ड ब्रेकिंग फॉर वुमेन T20. So to our listeners, you know, keep on listening. We'll give you all the updates today, tomorrow, and then on Saturday, and then on the big one on Sunday. Rituji, you know, it's, main kya bolu, it's amazing. And thank you to you and all the people who were involved with Leica Radio, with the audio support.
2: Thank you, Kamalji. Thank you.
3: Thank you.
0: This update was brought to you by TW Pays. Visit twpays.com/Leica for a chance to win a free card terminal. T's and C's apply.
1: And RoboThink. This summer, give your child a head start in AI, robotics and coding. Places are limited. Save 10% on full week summer camp bookings with code LEICA10 at participating locations. Book now at robothink.co.uk. Terms apply.
0: Holiday breaks are brought to you by South Hall Travel.
2: तो आपको याद दिला दें कि अगर आप हॉलीडे जाने की सोच रहे हैं तो साउथ हॉल ट्रैवल के पास दुबई की बहुत ही अच्छी डील्स है. आप उन्हें फोन कीजिए 0208-574-8410 पर और दुबई घूमकर आइए. सभी कुछ एट ऑल प्रोटेक्टेड भी है.

0: Dates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल

0: Star Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide. This summer, will your child just use technology or learn to build it? At RoboThink Summer Camps, children create robots, learn coding. Use code LAIKA10 for 10% off full week bookings. Visit book.robothink.co.uk/LAIKA or call 07533 065 549.
1: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
2: वेल, शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
1: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
3: LAIKA Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
4: You probably think you're pretty good at multitasking behind the wheel. I mean, you have to multitask to drive. So what's wrong with checking your phone? The thing is, your brain simply doesn't work like that. Even if it's a quick reply, affects your concentration and makes you less able to react to hazards. If you use a mobile phone while driving, you're 4 times more likely to crash. Think. Put your phone away.
5: If I'm going out on my new paddleboard, the last thing I'm taking is my phone, right? Buoyancy aid, fine. But mobile? My whole life's on that phone. Why would I risk losing it in the... Coast Guard, help!
6: Okay, help's on its way.
7: Grab my hand!
8: Phone. In a waterproof pouch. It's the first thing I pack now.
9: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please respect the water.
10: ZTV HD पर देखिए एक नई कहानी।
11: हमारे पति हमको छोड़ दिए।
10: गंगा, जिसने अपने पति का साथ खो दिया।
11: दिल तो टूट पे गया।
10: मगर अपनी बेटियों के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी।
12: एक पत्नी अपनी जिंदगी से हार मान सकती है, लेकिन एक माँ कभी हार नहीं मान सकती।
10: माँ और बेटियों के संघर्ष और उम्मीद की कहानी, गंगा माई की बेटियां, हर शाम 7 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT394.
3: This is the LAIKA Radio Network, broadcasting across the UK. Did you know you can advertise on this station? LAIKA Radio Midlands, plus our other offerings. LAIKA Radio Greater London, LAIKA Gold Greater London, and LAIKA Radio Greater Manchester. As a combined network, we can give you a competitive rate to spread your message to a wider audience. Call 0116-471-0697 or email sales@laikamedia.co.uk.
13: Tasty track of the hour, brought to you by Coca Noodles.

0: tasty track of the hour. Sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
1: Manoranjan with Ravi Sharma.
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
3: तो आज £1 आपको देगा 127 भारतीय रुपए, 370 पाकिस्तानी रुपए एंड 164 बांग्लादेशी टका.
4: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: जी हाँ, आप सुन रहे हैं Leica Radio Network और आपको बताते चलें कि Leica Radio Network ZTV के साथ मिलकर आपके लिए ला रहे हैं Mythological Stage Show हमारे राम और ये होने जा रहा है 9 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में at London 17 Apollo. इसमें आशुतोष राणा रावण बने हैं और राहुल बुच्चर ने राम का रोल प्ले किया है और अगर आपने अभी तक टिकट्स बुक नहीं कराए हैं तो जल्दी कीजिए.
2: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
3: The gold rate is £98.10 per gram.
2: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester or call 0116-266-4278.
3: तो आपको याद दिला दें कि भाई कल लेजेंडरी हरी हरन लाइका रेडियो हेडक्वार्टर्स में होंगे, लाइका हेडक्वार्टर्स में होंगे और उनका शो आ रहा है सोल इंडिया एट रॉयल फेस्टिवल हॉल. तो अगर आपने टिकट्स बुक नहीं कराए हैं तो आप southbankcenter.co.uk पर जाकर टिकट्स बुक करा सकते हैं और ये शो है सैटरडे 4 जुलाई को और इसके एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स हैं लाइका रेडियो. और बस अब अगला गीत लेकर चलेगा न्यूज तक. न्यूज के उस पार बाली ब्रह्म भट्ट आपका साथ देंगे लेकिन मैं कल आपसे फिर से मिलूंगी. तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए एंड इस शो में मेरा साथ देने के लिए थैंक यू. सी यू टुमारो.
5: हेलो हेलो हेलो, वेक अप विद मी काजल ऑन द ब्रेकफास्ट शो वेयर आई टेक यू डाउन मेमोरी लेन, गेट इंस्पायर्ड बाय मॉर्निंग मंत्रा मंडे टू फ्राइडे 6 AM to 10 AM लाइका गोल्ड एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स.
6: ये है
7: लाइका रेडियो.
8: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
9: Location, location, location.
10: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
9: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
10: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
9: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
10: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
9: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
10: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
9: High appreciation.
10: In Dubai.
11: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than Citybond Travel. Your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises, and soul-enriching yatras. We've got it all. Call Citybond Travel on 0116-266-6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
12: The theatrical blockbuster Mrs. Kapoor's Daughter's Wedding is back for a third season. This time there's a wedding, a secret and a murder.
13: OMG!
12: Mrs. Kapoor's Daughter's Wedding 3, The Murder Mystery. As the celebrations begin, the truth turns deadly.
13: Murder Mystery!
12: That's in Leicester on the 4th of July at the Curve Theatre and Birmingham on the 26th of July at the Alexandra Theatre. Get your tickets now before the killer gets away. MKDW.co.uk. Exclusive radio partner. Like a radio.
6: बिजनेस के कार्ड पेमेंट चार्जेस देख के कभी सोचा है
7: यार मैं कहीं ज्यादा तो नहीं दे रहा? पता लगाने का एक ही तरीका है, अपना लेटेस्ट स्टेटमेंट TWPays को भेजिए और 24 आवर्स में पाइए एक फ्री कंपैरिजन कोड। विजिट TWPays.com/Laika या कॉल कीजिए 0203129-9840। TWPays, हर ट्रांजेक्शन पर ज्यादा बचत।

0: is Leica Radio across the Midlands.
1: बड़ा कठिन है प्रश्न ये भैया आए बारंबार इस उम्र में पूछे बीवी क्या करते हो प्यार मुझसे क्या करते हो प्यार अरे पूछे मेरी बीवी डू यू लव मी
2: तो क्या कहा आपने
1: अरे बरसों से तो कहता आया आई लव यू हर दिन हर पल यही कहूं मैं आई लव यू

हमने दो गाने आपको सुनाए, रिमेम्बरिंग मोहम्मद अजीज ऑन हिज सेकेंड 72nd बर्थ एनिवर्सरी, कर्मा फिल्म का, जी आई थिंक दिलीप कुमार साहब के ऊपर इनकी आवाज थी और अनिल कपूर के ऊपर इनकी आवाज थी फिल्म राम लखन में। अब आगे जाते हुए हम जरूर और बातें करेंगे मोहम्मद अजीज जी के लिए, लेकिन अगला गाना सुनिएगा, आई हैव गॉट अ सरप्राइज फॉर यू, सुनिए।

0: Pakistani rupees 371.59, Afghan Afghanis 84.82, and Kenyan shillings 172.87.
1: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. L-Y-C-A. This is Leica. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: Gold is currently trading at £99.40 per gram.
2: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins, and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
3: Leica Radio.
4: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल. एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ. सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे.
5: Gold Afternoons is sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India. From classic snacks to new flavors, find your favorites at your nearest station store. लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
6: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी.
5: समारा ब्लैक टी 1 kg 3.99, एलिफेंट मीडियम आटा 25 kg 14.99, फाल्कन ब्राउन शुगर 3 kg 3.99, लैला बासमती राइस 10 kg 11.99, सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम 1.99, फाल्कन रेड लेंटिल्स 1.5 kg 24.399, पार्ले जी मल्टीपैक बिस्किट 7.99 ग्राम 1.99, फाल्कन लेमन जूस 250 ml 3 for 1, फाल्कन कैश एंड कैरी
6: 82 असिस्टेंट स्ट्रीट LE12JU या रोलेट हिल LE54UN.
5: बिग डील्स, बिग सेविंग्स, व्हाइल स्टॉक्स लास्ट.
7: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फौरन का फोन मिलाए 0208390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
5: लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन.
8: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 0203963 757. Greens by Danube. Prime location.
5: High appreciation.
8: In Dubai.
9: Sita aaj Lanka khud jalane aayi.
10: This July, witness the rise of a new force.
9: Hi boys.
10: What's up? Yashraj Films presents Alpha. Alpha stars Alia Bhatt and Shalvari in a high-octane action spectacle alongside Bobby Deol and Anil Kapoor.
9: Jisse tumse baat karni hai. Rok lo. तो बात कर
10: लो. प्रोड्यूस्ड बाय आदित्य चोपड़ा एंड डायरेक्टेड बाय शिव रावल.
11: मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है.
10: डोंट मिस इंडियाज बिगेस्ट फीमेल लेड एक्शन इवेंट.
11: इंडिया एयरफोर्स करेगा.
10: अल्फा इन सिनेमास फ्रॉम द 3rd ऑफ जुलाई.
12: None eaten, get ready. Pepe's Piri Piri is firing up something big. Our store is now open. From flame-grilled chicken to mouth-watering wraps, it's bold, it's spicy, it's pure Pepe's. Visit us at 126 Abbey Street, CV11 5BZ. Pepe's Piri Piri. Pepe-licious.
2: Leica Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and Leicestershire with the UK's biggest Asian hits. Miss your favourite show on Leica Radio Midlands? You can now listen back at leicaradio.com. It could be breakfast with Kajal, drive with Raj Badden, the legendary presenters Ravi Sharma, Bali Brambat or the energetic Radio Wally. Listen back wherever you are by logging on to leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Available in all iOS and Android stores. Download the app for free and listen to Leica Radio Midlands when you want. Leica Radio Midlands is a part of the number one Asian commercial network, the Leica Group, home of Leica Radio and Leica Gold.
1: Leica Radio.
13: ZTV HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां. मिलिए 46 साल के

0: बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से।
1: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
2: खुद से भी ज्यादा।
0: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में।
2: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है।
0: क्या ये नजदीकियाँ बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुमसे तुम तक हर रात 8 बजे ZTV HD पर। अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394।
3: It's a dog walk. I do it every day at home. I don't need to plan it. Check the tide. Check my phone. Why don't I need to take my...
4: Hey, boy!
5: Coast Guard, we're stuck.
6: Okay, help's on its way.
5: Hold on, mate.
7: Shoes, tide, phone.
8: Back before dark, love. Okay.
9: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please, respect the water.
10: Uncle G spent £40,000 on rent, but zero online. His shop is empty. His nephew's TikTok is booming. Be seen. Visit HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Outdated is out of business. Visit HeartyHanks.com today.
11: This is the largest commercial Asian radio network in the UK. This is Leica Radio across the Midlands.

0: is Leica Radio across the Midlands.
1: मोहम्मद अजीज जी को याद कर रहे हैं. पिछला गाना जो आपने सुना था वो चालबाज, जिसमें श्रीदेवी थी.
2: कुछ भी नहीं रहता.
1: That song was on Sunny Deol.

0: ओपी नैयर का संगीत और एस एच बिहारी की लिरिक्स, फिल्म नसीहत 1967।
1: द लाइक रेडियो नेटवर्क इज नाउ आल्सो स्ट्रीमिंग लाइव ऑन द नेशन प्लेयर ऐप, डाउनलोड ऑन iOS एंड एंड्रॉइड मोबाइल डिवाइसेस।
0: मेरा फेवरेट यादों की बारात का गाना जो है जीनत अमान, एंड आई जस्ट वॉज करेक्टेड बाय ABH। जो मैंने कहा था ना खुद गर्ज का जो गाना था उसमें मोहम्मद हजीज हैड संग फॉर जितेंद्र एंड नॉट फॉर शत्रुघ्न सिन्हा। थैंक यू।

0: Isha Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide. Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
1: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-6333 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
2: This summer, don't just step out, stand out. The Janan and J. Summer Sale is almost here, with up to 70% off fashion made for brighter days, special moments and summer celebrations. Visit your nearest Janan and J. store from Saturday the 4th of July or shop the sale online from Friday the 3rd of July. Your next favourite look is waiting in store and online. Janan and J. Summer Sale, up to 70% off this summer. Make your statement.
3: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना
4: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स
3: क्रंच कैन नॉट वेट सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ
0: द फ्यूचर बिलोंग्स टू क्रिएटर्स एट रोबोथिंक समर कैंप्स चिल्ड्रन बिल्ड रोबोट्स लर्न कोडिंग एंड फ्यूचर रेडी स्किल्स लाइक आवर लिसनर्स गेट 10% off full week bookings with code LIKER10. Kit package worth over £7,500. Visit book.robothink.co.uk/LIKER.
5: Punjab the biggest tunes.

0: कितना प्यारा गाना है फिल्म हम का. एंड मेरा जब भी स्टेज शो होता है वहां पे लास्ट गाना 90% ऑफ टाइम्स मैं ये गाता हूं. अब सैंडी शाह इज हियर, एंजॉय हिज कंपनी.
1: The Leica Radio Network is now also streaming live on the Nation Player app. Download on iOS and Android mobile devices.
0: हम तो जाते अपने गांव हरिहरन जी को मिलने जा रहा हूं. कल तक के लिए इजाजत. And on Leica Radio Midlands is gonna be Raj Badan.

0: लिखे एक नई मोहब्बत की दास्तां, तुमसे तुम तक हर रोज रात 8 बजे आपके अपने जी टीवी HD पर।
1: This is the largest commercial Asian radio network in the UK. A true Radio Wally Cracker Classic. Name the 90s number. This is Leica.

0: Talker Radio Network across London, Manchester, and the Midlands. CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram.
1: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code HamariRam10 for a 10% discount on all shows and tickets.
0: Exclusive radio partner, Like Our Radio.
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
3: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
2: High appreciation.
3: In Dubai.
4: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी. सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS. कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड वेम्बली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर लेस्टर में. कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर. यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा, फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स. सब के लिए कुछ न कुछ है. 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS पर. चाहे डाइन इन करो, टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरी से मंगवाओ. कॉल कीजिए 0116-332-5100. एग जंक्शन जो वेम्बली और किंग्सबरी में तो है, अब लेस्टर में, जहाँ हर बाइट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी.
5: Uncle G spent £40,000 on rent, but zero online. His shop is empty. His nephew's TikTok is booming. Be seen. Visit HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Outdated is out of business. Visit HeartyHanks.com today.
0: Did you know you can advertise on this station, Leica Radio Midlands, plus our other offerings, Leica Radio Greater London, Leica Gold Greater London, and Leica Radio Greater Manchester. As a combined network, we can give you a competitive rate to spread your message to a wider audience. Call 0116 471 0697 or email sales@leicamedia.co.uk. Bollywood romantic hits throughout the night. This is The Love Sound.

0: ये है लाइका रेडियो। लोकेशन लोकेशन लोकेशन
1: इन रियल एस्टेट लोकेशन इज एवरीथिंग एंड दिस वन इज अ विनर।
0: इंट्रोड्यूसिंग ग्रीन्स बाय डैनियो, अ प्रीमियम कलेक्शन ऑफ टाउनहाउसेस एंड विलास
1: लोकेटेड इन दुबई इन अ प्राइम लोकेशन फॉर हाई अप्रिसिएशन।
0: स्टेप इनसाइड एंड वॉक इनटू फुल्ली फर्निश्ड टाउनहाउसेस एंड विलास विद प्रीमियम इटालियन फर्निशिंग्स।
1: स्टेप आउटसाइड एंड एंजॉय 50+ अमेनिटीज इनसाइड द मास्टर कम्युनिटी।
0: एंड द बेस्ट पार्ट, टाउनहाउसेस एंड

0: Suk, Desert Safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
1: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
2: Southall Travel, Atoll Protected.
3: ZTV HD पर देखिए साहस और जज्बे की नई कहानी
4: जगदात्री,
3: जिसमें माँ गौरी की सरलता बसती है.
4: माला ले आना, लाया जी.
3: वो वक्त आने पर महिषासुर मर्दिनी भी बन जाती है.
5: टीम, get ready for the action.
3: जिसके शांत स्वभाव में भी छिपा हो शेरनी का रूप, वो है जगधात्री. देखिए रोज रात 8:30 ZTV HD और Z5 पर. अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394.
6: Bollywood's biggest 90s songs non-stop.

0: Breaker Radio. CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith, Hamari Ram.
1: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code Hamari Ram 10 for a 10% discount on all shows and tickets.
0: Exclusive radio partner, Like our radio.
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410 दैट्स 8574-8410 साउथ हॉल ट्रेवल At all protected.
0: Punjab the biggest tunes. No.